0: अथवा सॉन्ग नंबर 2 पानागिनिप बाय निकोल
1: नंबर 1
0: सॉन्ग नंबर 1 कलापस्तांगन बाय फीटर कर्मा